0: ऐसा जोग कमाओ जोगी।
1: इस तरह केड़ा जोग होना चाहिए था? दसम पातशाह कल पातशाह ज्ञान कर देना।

गुरु नानक सच्चे पातशाह कलयुग दे महान अवतार उन्हां दी वड्याई भाई साहब भाई गुरदास जी सिख धर्म दे महान विद्वान उन्हां ने अपनी कलम नाल कीती है। बड़ा सुंदर ए प्रसंग गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दी सिद्धा नाल ज्ञान चर्चा विचारधारा गोष्ठ जिथे भी कोई रब तू भुलिया इंसान गुरु नानक बाबा नू नजर आया सतगुरु उथे आप पुजे। संसार दी रीति है भई महापुरश वली पीर पैगंबर उन्हां कोल दुनिया जांदी है पर गुरु नानक सच्चा पातशाह आप लोगों कोल जांदे रहे। बाबा काशी गए बनारस गए हरिद्वार गए गया जी गए क्यों गए भई लोगों का तीर्थां ते इकट्ठ हुंदा सी ते बाबा जी उथे अपने विचार सुनांदे सी लोगों नू सीधे मार्ग ते लांदे सन। बटाले दे लागे बिल्कुल नजदीक क्योंकि बटाले विच गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दे सौरा परिवार सी ते लागे अचल बटाला है उह सिद्धां दा बहुत वड्डा गढ़ शिवरात्रि दा मेला लगा होया सी ते गुरु नानक ने सुनहरी मौका तकिया कहण लगे मर्दाने आ चल गरीब नवाज पातशाह सत वचन। भाई साहब भाई गुरदास जी लिखदे ने

अपनी शक्ति नाल ओ जेड़े लोटे विच लोग पैसे पा रहे सन ओ लुका दिता। भाई साहब भाई गुरदास ने बड़ी प्यारी बात कही। भाई साहब कहंदे ने भगतियां गई भगत भले, भगतियां गई भगत भोले। जिस वेले भगतियां ने तकिया भी जिदे विच लोग माया पा रहे ने वो लोटा किधर चला गया, ते भाई साहब कहंदे ने ओ भगतियां नू ओ भगत पौनी भुल गई, ना उताल रहा ना उराग रहा।

खादी खुण सुजुगी सिरा। जिस वेले बंदे नू अपनी हार हुंदी दिस पवे ना, ए आम बात है, फिर वह झगड़े ते उतर आंदा है। और तां पेश जांदी कोई नहीं। जोगियां ने गुरु नानक बाबा नाल बहस करनी शुरू कर दिती। भाई साहब भाई गुरदास जी कह रहे ने, कैसी बात सुनना जरा प्यार नाल सुनना। कहंदे ने खादी खून सुजुगी

हे नानक जी, ये गल दसो, एक पासे ते तुसी उदासी देख तारिया पे, एक पासे तोड़े बाल बच्चे तोड़ा परिवार तुसी ग्रिस्ती हो,

फिर उन्हों के घर मंगन जाई, बिन दिते किछ हाथ न आई। ए सुन बचन जुगीसरा, पैसा कहने हूं झगड़ा कर लगे ने, गुरु नानक नु डराउन लगे ने, अपनी शक्तियां दा प्रभाव पाती।

करके उड़न पंखी। भाई साहब कहने ने कोई उड़न वाला पंछी बन रहा है, कोई बघियाड़ बन रहा है, कोई चीता बन रहा है, कोई शेर बन रहा है। एक पर कर करके उड़न पंखी, एक पर करके

आसरा गुरु की संगत दा बाणी दा उस निरंकार वाहेगुरु दा आसरा शिव रूपी करता पुरुष चले नाही धरत चलाई सिद्ध तंत्र मंत्र कर चढ़ पे रिधियां सिद्धियां दे मालक बने बैठे सन गुरु नानक नु डला रहे सन भाई गुरदास कह रहे हैं सिद्ध तंत्र

बाबा जी जिस वेले मुल्तान गए ना ते उथे दे पीरा नू पता लगा के वड्डा पीर आया एदे अगे साडी दाल नहीं गलनी ते उन्हां ने अपने एक सेवक नू अपने चेले नू एक दुध दा छन्ना भर के भेजिया जिदा मतलब सी भी पीरीपुर मुल्तान इथे तेरी लोड़ ही नहीं इथे अगे पीरा नाल भरिया पिया तेरी की लोड़

आखिया ए सोना मनुच्छा जन्म अमृत वेला अमृत वेले रूपी सोना मनुच्छा जन्म प्राप्त होया ते तू इसनू सौके बतीत कर देवेगा। ऐ मेरे मन तू बहाने कर रहे हैं भाई गलियां चिकड़ दूर घर करने ने हो रब दे नाल प्रीति पौनी ते फिर सरफा करना भाई मते ए कंबली ए लोई भिज ना जावे तो फिर तेरा प्यार कादा होया। तां फरीद जी कहंदे हन गलियां चिकड़ दूर घर नाल प्यारे ने हो चला तां भिजे कंबली रहां तां टुटे ने हो आख्या भिजो सिजो कंबली अलो बरसे में हो। एवी तां उदे हुकम विच बारिश हुंदी है ते तू उदे हुकम दी अदूली करके जे सत संगत विच नहीं जांदा ए लेख ना लिख तेरी नितनेम दी कड़ी इत्थे तेरे आलस करन नाल जे बिना जपन दे बतीत हो जावे ए लेख ना लिख।

एक रजोगुणी पुरुष जो फरीद जी दे पास आया, मथा टेकिया, ते मथा टेकन लग्या ओ पूरी तरह ना चुकिया, भई मते पग ना मैली हो जावे। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। तब बाबा फरीद जी कहंदे न, भई वेखो इसनू पुलावा पग दा है, भई मते पग मैली ना हो जावे मथा टेकन लग्या। पर इस अणभोल पुरुष नू ए नहीं पता, भई एक दिन ए सिर भी जिस सिर ते पगड़ी बनी है, इस सिर नू भी मिट्टी ने ही खा जाना है। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु।

कि काल जो है ए मौत रूपी कुहाड़े नू हर वेले चुक के हर मनुख दे नाल है। परमेश्वर दे हुक्म अनुसार ए जीव आत्मा नू ले जांदा है। फरीद जी कथन कर दिया न, मैं ता अपने पति खुदा दी प्राप्ति नू चाहुंदा हां, ते तू मेरे अंगियार औगणा नू वेखना चाहुंदा है। इस दे विच कोई औगण होवे ता मैं इस नू फड़ के लै जावां, कदों इस दे श्वास समाप्त होण ते मैं इस नू लै जावां। तो फरीद जी अपने प्यार विच रंगे होए उस लोहार नू कह रहे हन, भाई तू अंगियार नू लोड़ रहे हैं, जंगलां विच असी रब नू लभ रहे हां। कंध कुहाड़ा सिर

अवगण बड़ी तिखी छुरी मनुख दे दैवी गुणा नूं कट के नकारा करके सुट दें मनुख मनुख ना रह के पशु हो जाता औगणे आला मनुख पशु गुणवान प्रभु अपने प्यारियां दे हिरदे च गुण वसा के तोरदा औगणा दे वस पै के बंदा थले गिर जाता अपनी हस्ती तो नीवा हो जाता अवगुण मनुख दे गुणा नूं कटदे ने दी हस्ती नूं कटदे ते सतगुरु अवगुणा नूं कटदे सतगुरु दे नजदीक होइए सतगुरु दे चरणी लगीए ते अवगुण कटे जांदे ने गुण निसरदे ने।

धन गुरु तेग बहादुर सोच लै भाई धार लै अपने मन विच इसनू धार लै मतलब वसा लै मन विच सिर्फ चार दिनां दी गल है बंदा नाल तकबर फरिया कूड़े करदा माने मैं हां चतर सियाणा सुंदर शेर आप नू जाने आकड़ आकड़ चले किसे दे नक तले नहीं आने साई लोका जद फूका निकले आवे होश ठकाने ए बंदा जिन्ना मर्जी मान कर लवे पर उदो तक है जदो सब कुछ ठीक है जदो थोड़ी भी चीज गलत हो जावे कहता जी मैं बड़ा तकड़ा हां बलवान हां पर एक दिन मंजे ते पै जे निढाल हो जाता है। धन गुरु तेग बहादुर मसालो अपने मन में ए राग सिंधी

गुरु की संगत अज दा शुभ दिन कॉन्फ्रेंस दे पहले दिन दी अरमता और बख्शिश सतगुरु जी दी। इस वक्त समा

चार ताका दरबारा अत ऊंचा ताका दरबारा अंत नहीं किछ पारा वारा कोट कोट कोट लख दावे।

0: अथ सत तीर्थ परस किए। जैसे अथ सत तीर्थ परस किए, जुग चार चलो कैलाश
1: जिना गुरमुखां दे कदम सत संगत वाले चल के जाते हैं। किड्डा वड्डा महात्म भाई साहब भाई गुरदास जी ने दसिया है कि जो गुरमुख जन सत संगत च बह के जपते हैं सतनाम, संगत च बैठ के वाहेगुरु जपन का किड्डा वड्डा महात्म है। पर एक शर्त है कि जपे गुरु चरणा दे नाल मन नूं जोड़े। जैसे अठ सठ तीर्थ परस

0: ना जाए जल। सतगुर कोट पहना आगे हुए लेत है।
1: तू एक कदम सत संगत वाले चलता है ते गुरु तैनू करोड़ा कदमा अगो लैण आए। ऐसा गुरु क्यों ना ऐसे गुरु दे बलिहार सच्ची है। किन्ना कदमा ते लैण आउंदा है कदों गुरु लैण आउंदा है। साहिब बाणी विच इसका हवाला दे रहे कि जह मार्ग के गने जाए ना कोसा हर का नाम संगत। तू गुरु वल एक कदम रखता है गुरु तैनू करोड़ा कदमा अगो लैण ले आ रहा है। क्यों ये मेरा है ये मेरे पासे आ रहा है। इसे लई साहिब बाणी विच कहंदे हन कि मित्र उस नूं बना ओ तेरा सच्चा मित्र है जिहड़ा इत्थे भी ते दरगाह विच भी आखे भाई ये मेरा है भाई इस दा हिसाब मेरे पासों दा। सज्जन सेई नाल मैं चलदियां नाल चलन जिथे लेखा मंगिए तिथे खड़े। ऐसा मित्र कौन है प्यार नाल आपको धन गुरु गोविंद एक पिता एक सके हम बारिक तू मेरा। ऐसे गुरु तो सदके जाई ऐसे गुरु तो बलिहार जाई। ये शब्द जो आप सरवण कर रहे हो धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी का ये शब्द है। पर जोत
2: काहे को दौलत है तुमरी सुध सुंदर सिरे पदमा पतला है। And it's that same message. Why are you wandering? Your husband Lord is so beautiful. God has no lust, no anger, no greed, or worldly attachment. No illness. No fear. God has no body, but he bears love for all. And his love is without condition. He is without home and cannot be destroyed. God gives to those who know it and to those who don't. He gives the earth, he gives the heavens.

कांगड़ा राग तो बाद कल्याण राग दा आना सुभाविक है। रागमाला विच भी गौरा और कांगड़ा कल्याणा दी तरतीब रखी है। कल्याण खुशी पैदा करता है, आत्मा आनंद विचाई प्रभात दी लो दी उड़ीक करती है। प्रभु दी याद ने सिमरन ने दृढ़ करा देता कि माया दे सारे जतन किसी काम नहीं। आनंद विचाई आत्मा लालन की शोभा सुन सुन खीवी हुंदी है। शब्द दे सिमरन दी बरकत नाल सदा सद जागत रहिंदी है आत्मा। अते कल्याण सावधान मुद्रा विच ही गाया जांदा है। इस राग विच गुरु रामदास जी अते गुरु अर्जन देव जी ने बाणी उचारी है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे राग भेद अनुसार कल्याण राग दे अधीन राग कल्याण भुपाली भी आउंदा है। कल्याण अते कल्याण भुपाली दोनों भिन्न अते स्वतंत्र राग हैं। कल्याण राग विच गुरु रामदास जी दे 6 शब्द हैं अते कल्याण भुपाली विच केवल 1 शब्द है। इस राग विच तीबर मध्यम अते बाकी शुद्ध स्वर लगते हैं। इसका बादी सुर गंधार अते समाधी निषाद है। गायन समा है रात का प्रथम पहर। राग कल्याण विच सरवण करो 2 शब्दों का कीर्तन। पहला शब्द है प्रभ मोहे कब गल लावह गे प्रोफेसर करतार सिंह जी। दूजा शब्द गायन कर रहे हैं भाई हरजिंदर सिंह जी श्रीनगर वाले। शब्द है गुण नाद धुन आनंद वेद। सरवण करो प्रोफेसर करतार सिंह जी होरां पासों प्रभ मोहे कब गल लावह गे।

देश है परदेश है, तेरा शरीर भावें कितनी भी दूर बैठा होवे पर तेरा मन गुरु दे चरणा विच होवे, तेरा मन गुरु दे चरणा विच जुड़िया रहे, ए उत्तम मंग है। कहो नानक तिस सब